उजाला रेडियो डे अवे प्लस पर देश भर में सुनाई देता है। तू बता दे सबको इसे बताते हैं। ऑटो में तू सुन सके, तू घर में सुन सके है उजाला रेडियो। और उजाला रेडियो साथ में ले जाइए, तू चाहे जहां पर जाइए, तू जान है तो उजाला रेडियो।

0: एक चीज के लिए एक आदमी अमूल्य हो जाते हैं, जिसकी मोल नहीं, तोड़ मोल नहीं होती, और ये चीज हमेशा खुदा के घर से आता है। वो चीज थी मुकेश की आवाज की टिम्बर, जिसका वो धनी था। वो टिम्बर किसी की आवाज में मुझे और सुनाई नहीं दी।
1: भाई और बहनों, ये है मेरी जिंदगी का पहला गाना।

0: डॉक्टर जी प्लीज एक बात सुनती जाइए, बस एक बात डॉक्टर साहब।
1: कहिए।
0: वो जो आपने मेरे लिए दुआ की थी ना, जरूर सच्चे दिल से की होगी। भगवान ने सुन ली है और मुझे हो गया है।
1: क्या हो गया है?
0: मुझे प्यार हो गया है।
1: अच्छा, मुबारक हो।
0: लेकिन आपने ये तो पूछा ही नहीं किससे।
1: अरे हाँ, ये तो मैं पूछने भूल गई, किससे?
0: जी वो
1: बोली बोली कौन है वो खुशनसीब?
0: जी वो खुशनसीब आप ही हैं।
1: ओह थैंक यू वेरी मच। माफ करना, मुझे कोई भूख नहीं।
0: सुनिए, ये भूख वाली मोहब्बत बिल्कुल नहीं है।
2: ओए चांद जी।

नम्र संस्कार होने वाला है पूजा रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉर्मर होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net info@ujala.net

अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राहत फतेह अली खान और ये है उजाला रेडियो। उजाला रेडियो को सुनते रहिए और मधुर मधुर संगीत जो है वो सुनते रहिए उजाला रेडियो पे, और मेरे भी गाने सुनिए, औरों के भी सुरीले गाने सुनिए।

सो गया ये जहां सो गया आसमां दस्तम फन जुबीन नौटियाल एंड नितेश मुकेश फिल्म का नाम रहा बाईपास रोड उजाला रेडियो है ये सुनने वालों जहां भी हो आप वाचो कर दू बेंट गनीत लेकर फन देसे हेरलिके डग गनीत लेकर फन दे हेरलिके गाना इट इज मेरा औराब का साथ एंड दैट बिटेक इट लेकर गनीते फन दे हेरलिके गफारीद गाना

फिल्म का नाम है पल पल दिल के पास में इन द होफ रो करण देओल. इट इज साइन डेब्यूट फिल्म एंड डेज फिल्म इज गरेगिसेर डोर साइन फादर एंड इट इज नीमा मिंदर दन सनी देओल. और फिल्म का नाम रहा दुस पल पल दिल के पास एंड इट वॉज द टाइटल ट्रैक गाना. सिर्फ खूबसूरत गाना आपके लिए पेश है. Heerlijke gevarieerde Ghana on the one and only Dunia ka mashhoor Hindustani Super Radio. Op Bobby Amit Jairam ke saath, ik zou zeggen, geniet er lekker van. Ontspan lekker als je op dit moment lekker aan het werken bent, aan het koken bent. Of gewoon even lekker op de bank aan het hangen bent. Zet je radio gewoon lekker luid en ontspan en geniet. En ondertussen genieten we gewoon lekker van de stem van Arman Malik uit de film Yes Ali Ashiki. Organische naam is Hawa Banke.

ओमुंडे कैंडे वडी शराबन वडी शराबन वडी शराबन में फिल्म का नाम है दे दे प्यार दे। फिल्म का नाम है दे दे प्यार दे एंड फ्राई फटाउट इज दैट गिव मी लव। हिलक गाना हिलक फील गुड गाना बाय द वन एंड ओनली उजाला रेडियो, दुनिया का मशहूर वाला सुपर हिट रेडियो स्टेशन, और वो भी अमित जयराम के साथ। ja, degene die mij kennen, die weten dat ik een grote liefhebber ben van jaren 90 Ghana. En ook in dit uurtje heb ik weer een evergreen Ghana geselecteerd. Uit het jaar 1994. Filmkanaam heet Awo Piarkari. Een heerlijke evergreen Ghana. Our Ghana kanaam heet Chandese Parda Kijie. Ik zou zeggen, geniet ervan.

भारत का करिश्मा एक दूसरे से है मिलना, दुनिया की जर्जमी पर किस्मत को है आसमाना, ये प्रेम का जहां है हरगिज न भूल जाना, आपस की मोहब्बत ये धर्म है सिखाता। हमारे प्यारे सुनने वालों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, राम राम, नमस्ते और आदाब। आज शुक्रवार 25 तारीख सितंबर का प्रोग्राम जो आप लोग सुनने को जा रहे हैं उजाला रेडियो का, हमेशा की तरह जिनके घर पर कोई भी खुशियां, जन्मदिन, सालगिरह, विवाह, शादी विवाह हो, आप को हार्दिक से बधाई और तहजिल से मुबारकबादी अर्ज किए जाते हैं। जो कोई बीमार या तो लाचार है तो उनकी तंदुरुस्ती के लिए भगवान से प्रार्थना, अल्लाह से दुआ है आप की ताकत और तंदुरुस्ती के लिए। करीबन 10 मिनट व्यतीत हो चुका है 9:03 ओवर 9। खुद मोरख आलम, इट इज फ्राइडे 25 सितंबर 2026। यहां से लेकर ठीक दिन में 12 बजे तक आप लोग के साथ हम देने वाले हैं। आप लोग चाहे यहां पर आप हमें सुनते होंगे, सुनते ही जाइए दिन में 12 बजे तक। जहां तक मेरी आवाज पहुंची वहां तक हम आप सभी को आज सुबह का प्रोग्राम में स्वागत कर रहा हूं। मैं हूं सुभाष शिव गोविंद, खुद मोर खलमाओ, वेलकम। अगर हमारे प्यारे सुनने वालों, अगर आप लोग हमारे प्रोग्राम में हिस्सा लेना चाहेंगे तो उजाला रेडियो का व्हाट्सएप का फोन का नंबर है 020-363-0808 पर। उजाला रेडियो का दफ्तर आज सुबह में 10 बजे से भी खोले जाएंगे, फन मानदख तो मैं सातरख फन 3:03। और यहाँ का फोन का नंबर है 020-409-0807 पर आप लोग तार कर सके हैं। उजाला रेडियो का व्हाट्सएप का पता है www.ujala.nl या तो info@ujala.nl पर हर एक जानकारी आपको मिलेगा। तो चलिए हमारे प्यारे सुनने वालों, सुबह का प्रोग्राम को आरंभ करते एक सुंदर सा लक्ष्मी चालीसा से, और आप लोग सुनेंगे इस तरह से।

अवसरों से महालक्ष्मी चालीसा जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने एंड यू आर उजाला रेडियो। फ्राइडे शुक्रवार का प्रोग्राम

जो शुरू हो गए हैं ता इतना तो लोग से मांग ले पूछे तो लोग से इकर जान को ले बात खाऊं फंदा को करना का पकाओ को यार आंच मत अलग फ्राइड के जब हम काम जब बनाए लो प्रोग्राम तब नतुल लग चाहे जाने की का हो आज वीकेंड में का करे कोई का पकाओ कोई का खाओ कोई नतुल का पिए कोई अगर आप चाय या तो कॉफी या तो खेम्बर तेई बनाई के बैठल हुई है या तो आप ऑनबैज करते होंगे तो स्वादी से ऑनबैज कीजिए चाहे जो ची ऑनबैज करते हुई यही चीज माकल कलमाओ एंड यू एंड उजाला रेडियो का प्रोग्राम है और हमारे प्यारे सुनने

और चलिए प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हुए खूबसूरत सा गीत जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे और देखा जाए आलमेर में और खास करके माइक बुद्धू प्रोग्राम को बैठ करके सुने खुद मोर्ख माइक। और चलिए भाई जी ये गाना तुम्हारे नाम

नहीं तो क्या है, इस तरह से हरिहरन एन साधना सरगम जी के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुन रहे थे एन उजाला रेडियो का प्रोग्राम, हमारे प्यारे सुने बोलो शुक्रवार का प्रोग्राम है, इट्स फ्राइडे। और चलिए अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे तो इस तरह से गाना जो आप लोग सुनेंगे

फिर से मोहब्बत ना हो एंड कोई चाहत बोले ना हो, आयुष तरह से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे एंड उजाला रेडियो का प्रोग्राम है। और इतना मोई घाम निकल बा, इतना मोई वेर बा, इतना बिसाओ कल चाहे जो चीज आप लोग करिए यार, प्यार से दुलार से कर लेना, चाहे ये चाय या तो कॉफी या तो खेम्बर ते बैठ के पीते हुए तो प्यार से पिए। देखिए सरक ना जाए हमारे बतियन सुन के। आई बॉय, आई बॉय, यू आर उजाला रेडियो, तेरे बिन अधूरा है यार।

0: इतना मोई प्यार भरा गीत जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे। और चलिए अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे तो तुल बिरुख शहर में, जहां पर सुनीता भी प्रोग्राम को बारीक सुने खुद मूर्ख, तो ये गाना तुम्हारे नाम।
1: कुछ रिश्ते किस्मत से नहीं मिलते, वो दिल की दुआ बनकर मिलते हैं, और जब वो मिल जाए तो हर धड़कन

0: होती, बस एक इंसान होता है और दिल उसे अपना मान लेता है।
1: और अगर वो इंसान तुम हो तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए।

रे यार तेरे नाम की धड़कन, कितना मोई विशाल आई नब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे तो देखा जाए संद्रा भी प्यार के साथ प्रोग्राम को सुने तो प्यार के साथ गाना पेश है तुझसे इश्क हुआ आई बॉय एम्पा जी क्या बात है यार

तुम्हारी कसम तुम मुझे बहुत याद आए। और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने, कुमार शानू एंड कविता कृष्ण मूर्ति जी के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुन रहे थे। तो और मेरे शहर में देखिए माइक बुद्धू जी भी प्रोग्राम को बढ़कर सुने, तो पास जी ये गाना तुम्हारे नाम।

0: अरे यार चाहे मेरा जान जाए एन चाहे मेरा दिल जाए, अवसर से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुन रहे थे। और हमारे प्यारे सुनने वालों, नाद रिक्लाम नाद ब्रेक यार, फिर हम आप लोग से जरूर से मिलेंगे। बस प्रोग्राम को आप लोग सुनते ही जाइए। अतस बाई ना तीनेर ठीक 10 बजने वाले हैं। नाद ब्रेक नाद रिक्लाम बने हुए त्रुख यार, एंड यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हैं। कितना मोई वेरवा बा बाहिरे बल बे बाहिरे ना जाइए।
1: Vanuit de hoofdstad.

जना रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हैं आज शुक्रवार 25 तारीख सितंबर का प्रोग्राम फ्राइडे 25 सितंबर गुडमॉर्निंग अलमाओ आप को एक शुभ दिन करीबन 9 मिनट व्यतीत हो चुका है 10:09 ओवर 3 और आप लोग उजाला रेडियो का प्यार के साथ बैठ करके सुन रहे हैं और प्यार के साथ प्रोग्राम को हम बना रहे हैं आप सभी के लिए। वेल हम तो लोग से बता चुके हैं कि चुजवाई सेवा कि सबको इस सवेरे सवेरे फ्रुको फ्रुको सवेरे सवेरे पका ले हैं रखेने जी फ्रेश है यार और ये काम पे है या वेल तो काम पर जिन्हें कसी तब शुरू करिए या तो तू कलिया ज्यादा खाई बना ले फोर फंदा मई सब चीज ऐसे हो गए मजे पकावे है तो लोग मोई से पकाइए और पकाई के मोई से खा लिए। ओके दरहा शहर में भाई रकेश प्रोग्राम को बैठ करके सुने तो इस गाने को मांग किया है बोले चेहरा क्या देखते हो बोले दिल में उतर कर देखो ना कि हमारे दिलवा में का होवे है

0: चेहरा क्या देखते हो यार, बोले दिल में उतर कर, बोले देखो ना यार, बोले किसने तुम्हें रोका है। इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे, हमारे प्यारे सुनने वालों, उजाला रेडियो का प्रोग्राम फैंस पोलदर शहर में, जहां पर इस वक्त MEGB प्रोग्राम को बैठ करके सुने, तो चलिए MEG ये गाना तुम्हारे नाम कर देता हूँ।
1: मोहब्बत इंसान को पूरा कर देती है, लेकिन जब वही मोहब्बत अधूरी रह जाए तो सिर्फ रिश्ते नहीं, इंसान भी टूट जाता है। आज भी एक सवाल हर धड़कन से टकराता है, जब आखिर में छोड़ ही देना था तो मेरी रूह में उतर कर अपना बनाया ही क्यों। अब मेरे पास ना तेरा साथ है ना तेरी आवाज, बस एक टूटा हुआ दिल है जो आज भी सिर्फ तेरा ही नाम लेता है।

0: छोड़ देते हैं और फिर एक दिल हमेशा के लिए।
1: वेल, क्या बात है यार, कितना मोय, कितना विशाल गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुन रहे थे। एंड यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम, 20 मिनटन ओवर 3। ए गुडमॉर्निंग अलमाल जबल इज यू आर उजाला रेडियो। वेल, वीकेंड है,
2: बिजली गिरा के आप खुद बिजली से डर।
1: और तुम लोग से बता रहे गोरा से अपन दरा रहेगा बेबी अर जवेल, बेबी अर भाई ग्रोसर के और रेफल लीवर के सांबल बनाएगा भाई रकीस। ब्रेन बोन मेट कोल एंड ग्रोसर किप एंड लीवर सांबल, जवेल रेसिपी फॉर फंडा।

वल दिल तेरा दीवाना। और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे, हमारे प्यारे सुनने वालों और युवार उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हैं, तो चलिए मानो भी प्रोग्राम को बैठकर सुने हैं। अपना सुनू शक लिए गाना को मांग किया है प्यार के साथ।

आई बोई एहसान तेरा होगा मुझ पर, अवसरों से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे, एंड यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हैं। और अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे तो देखा जाए खास करके प्रदीप खेदू प्रोग्राम को बैठ करके सुने, तो भाई प्रदीप ये गाना आपने मांग के है, तो चलिए गाना तुम्हारे नाम कर देता हूँ।

लाल जब तक मैंने समझा जीवन क्या है एन जीवन बोले बीत गया। और इस तरह से किशोर कुमार जी के आवाज में ये खूबसूरत सा गीत जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने एंड यू आर उजाला रेडियो।

तौबा, ये मतवाली चाओ एंड यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम और वीकेंड बैना वीकेंड यार और पवन भी प्रोग्राम को बैठ कर सुने खुद मूर्ख चाय या तो कॉफी के साथ या तो खम्बर ते या तो आप बैठ करके ऑन बैठ करते होंगे तो स्वादी से ऑन बैठ कीजिए ना

आई बोए होटो से झूल तुम और मेरा गीत अमर कर दो। इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे, करीबन 18 मिनट बाकी रहा 11 बजने में। 18 मिनट फुटबॉल अलफ और देख बाहर कितना मोई वेर, कितना मोई घाम निकल बा, वेल लेकर वेर अच्छे वीकेंड एंड यू आर उजाला रेडियो आप लोग के साथ है।

यार नजर ना मिला। और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुन रहे थे और उजाला रेडियो का प्रोग्राम और कितना मिला शुरू करे से बनावे के पकावे है वेल खवेलदग एट स्मैक फॉर सराकी सालमाल यार। और चलिए अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे तो इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे

धीरे धीरे कुमार शानू एंड देविका पंडित जी के अवांश में गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने, और धीरे धीरे यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हमारे प्यारे सुनने वालों। और देखा जाए तो करीबन 7 मिनट बाकी रहा 11 बजने में, और अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे, और चलिए अब की बार गाना जो प्रोग्राम में हम आप लोग सुनाने वाले एक और ऐसा गीत जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे।

वेल तू मेरी जान बन गई, तू मेरी आदत बन गई। आओ इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे। एंड यू आर उजाला रेडियो यार वीकेंड है आई बॉय। Yabal, I boy, here we go. You are Ujala Radio.

हमारे प्यारे सुनावल ठीक 11 बजने वाले हैं। वेल पारा मारी बहू का टॉप सिंगर ऑफ बैठेगा ना विशाल खेमाल।

जुवार उजाला रेडियो का प्रोग्राम करीबन 7 मिनट व्यतीत हो चुके 11:00 सेफ एंड मनीतन ऑफर अलर्ट लास्ट ईयर से खत्म हुए या वेल लास्ट घंटों कितना हल्दी दोन आई सभी सुनने वालों को फाइन वीकेंड तो खबर हमारी तरफ से यार फाइन वीकेंड आप सभी को शुभ वीकेंड आप सभी को वीकेंड की जय हो मेरे अभी मोई बा Dus natuurlijk, weekend wel mooi zeg bunny jaar, mooi zeg katie, mooi zeg haye, mooi zeg banaye, mooi zeg pie, mooi zeg rahye.

नई नई शहर है, नई चाल है एंड जिंदगी है प्यार के। और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुने विजय रामबरन के आवाज में, एंड यू आर उजाला रेडियो है यार।

को प्यार बिना कोई कैसे गुजारे। और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने, करीबन 20 मिनट व्यतीत हो चुका है 11:20 बजकर 11 बैना बैना यार थोड़ा

मनवा मोरे डोले रे, आओ इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रही थी। और देखा जाए दिमन शहर में फौसिया भी प्रोग्राम को बैठकर सुने, खुद मोर फौसिया ये गाना तुम्हारे नाम। आई बॉय

देखो यार, भीड़ भाई भारी, भीड़ भाई भारी, देखो ये धनवा। आओ इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे, और उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे, हमारे प्यारे सुनने वालों, अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे तो देखा जाए ये प्रोग्राम को भी बैठ करके सुने हैं, और खास करके होफ दौरप में। आनंद मंगरू, हे खुद मोरखा।

0: बोले कोई ना जाने, बोले पैसा तो दे दे फिर चाहे जहां छू यार। वेल यू आर उजाला रेडियो, वीकेंड है यार।
1: हीरे मोती
0: और हमारे प्यारे सुनने वालों, ठीक है 6 मिनट बाकी रहा 12 बजे।

हमारे प्यारे सुनने वालों, ठीक है 12 बजने वाले हैं। आप लोग से अब हम धीरे धीरे इजाजत भी चाहेंगे और यही आशा है कि आज का प्रोग्राम जो हमने बनाए सजाए आप सुनने वालों को पसंद भी आए होंगे। हमारा साथ देने के लिए, हमारा प्रोग्राम सुनने के लिए आप सभी सुनने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। आने वाले दिनों में फिर हम आप लोग से जरूर से मिलेंगे। आप लोग अपना वीकेंड मोई से बिताइयो, आप लोग मोई से रहियो, अपना आपको जरूर से ख्याल कीजिए। जो भी आप लोग करेंगे वीकेंड में, प्यार से दुलार से कर लेना, नहीं तो ना करिए यार। कोई से प्यार हो तो बोल दे यार कि हमें तुम्हें प्यार है, हमसे तुमसे मोहब्बत है, ऐसा ना हो कि आपको पछताना पड़ेगा। हमारे प्यारे सुनने वालों, आप लोग मौज रहिए। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, राम राम, नमस्ते एंड खुदा हाफिज। खिदमत की आपका दोस्त सुभाष शिव गोविंद। बाय बाय, स्वाई स्वाई, फाइन वीकेंड।

रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सोते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू जाने।

नम्र संस्कार होने वाले हैं उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉर्मर होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net info@ujala.net

0: यह है उजाला रेडियो। रात और दिन, सुबह से लेकर शाम तक, 24 घंटे सिर्फ आपके लिए।
1: एक नाम

उजाला रेडियो सुन वालों, मैं हूं लॉयड महावीर। बस प्रोग्राम को आप सुनते जाइए एंड फनाफन फनाफ सेफ न्यू रात को 7 बजे हम फरमाइश लाने वाले भी और भी रिश्तेदार और के पास। दिस फनाफन तो सेफ न्यू बैनिंग बाई यूलियो 6 बजे प्रोग्राम को हम आरम्भ करेंगे। एक बैनर फनाफ जिस तो लगभग 2:30 तक, या dus vanavond ben ik er vanaf 6 uur op Ujala Radio. Beetje programma ko af sundre na sunte jana. Hele fijne dag. Fijn weekend. Shuv weekend. Avsabiko peesh kajan. Ujala Radio ke full team ke terse.

0: उजाला रेडियो देश भर में, तू जाना है तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में, हाँ हर गांव में हर एक कोना में ऑटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो डीएबी प्लस के जरिए उजाला इस वन हेल नीदरलैंड तू जाना है तो ढिंढोरा बजा दीजिए
1: उजाला सोना चिरैया चिरैया।

0: उजाला सोना चिरैया चिरैया चिरैया
1: चिरैया। ये उजाला रेडियो है और उजाला रेडियो पर अब यहाँ से गीतों का सफर जो कभी खत्म नहीं होता शुरू है।

0: Live vanuit de Hoofdstad.
1: अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां है, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश 15 आवराजे फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूर योर ईमेल नर info@ujala.nl info@ujala.nl 15 आवराजे फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो।

आपके घर पर आने वाले दिनों में किसी का मुंडन संस्कार है, मुंडन संस्कार होने वाला है, उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं। 15 फरमाइश फॉर्मार होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net info@ujala.net

0: कि दिल न लगे किसी से। यू आर उजाला रेडियो, ये है सुनवाला और उजाला रेडियो के जरिए यहाँ की दम ला रहे हैं फरमाइश। फरमाइश यहाँ से हम पेश करने वाले हैं और वो भी आज जबकि ये है शुक्रवार और भी शुक्रवार 25 तारीख सितंबर, तो आलमीर के रहने वाला राइस मोहम्मद रशीद ओरी की आज पहली सालगिरह है। फंदा 1 geworden, van harte gefeliciteerd राइस मोहम्मद रशीद ओरी, सालगिरह मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। अल्लाह ताला से दुआ है कि आपको हमेशा सलामत रखें, खुश रखें, तंदुरुस्त रखें, हर एक बीमारी से, हर एक मुसीबत से दूर रखें। राइस मोहम्मद रशीद ओरी फन हर्ट में थे ईर्ष।
1: देखो देखो
0: उजाला रेडियो के जरिए प्रोग्राम में सबसे पहला फरमाइश हम लाने को जा रहे हैं और भी राइस मोहम्मद रशीद ओरी के वास्ते। फंदाख 1 geworden और इस मुबारक मौके पर नामस पापा शरीफ ओरी एंड मामा अलीशा ओरी आली बुक्स की तरफ से प्यारा प्यारा लाडला बेटा के लिए लीव राइस। फंदाख फिर यौ ईस्ट jaar met slingers, taart en heel veel liefde bij elkaar. Alhamdulillah, jij bent onze grootste zegen. Jouw lieve lach brengt zoveel geluk in ons leven. Mogen Allah je beschermen op al je wegen en je vullen met gezondheid, geluk en zegen. Op nog heel veel mooie jaren en verjaardagen, lieve Raïs, wat zijn wij trots op jou vandaag en alle dagen. Allerliefste felicitaties toegewenst namens je papa en je mama. Papa Sharif Ori en mama Alicia Ori Ali Buskedrofse. Piara Piara Ladla Betagli Mubarak Badi Aur Dwai Kharkizat Arzhe.

आज है शुक्रवार 25 तारीख सितंबर, अलमीरा के रहने वाला है राइस मोहम्मद रशीद ओरी के आज पहली सालगिरह है। सालगिरह के खुशी के मौके पर पापा शरीफ ओरी एंड मामा अलीशा ओरी आली बुक्स की तरफ से प्यारा प्यारा बेटा के लिए बड़ी प्यार दुलार मोहब्बत और दुआएं खैर के साथ अर्ज के। राइस मोहम्मद रशीद ओरी की आज पहली सालगिरह है। सालगिरह के खुशी के मौके पर दादा रशीद ओरी और दादी रिया ओरी प्यारा प्यारा पोता के लिए डोप हुआ है। शफीरा और शरीफा ओरी प्यारा प्यारा बेटा के लिए बड़ी प्यार दुलार मुबारकबादी और दुआएं खैर के साथ अर्ज करें हैं।

अलमीर के रहने वाला रईस मोहम्मद रशीद ओरी की आज पहली सालगिरह है। सालगिरह के खुशी के मौके पर दादा रशीद ओरी और दादी रिया ओरी प्यारा प्यारा पोता के लिए दो फुआ है शफीरा और शरीफा ओरी प्यारा प्यारा बेटा के लिए बड़ी प्यार दुलार मुबारकबादी और दुआएं खैर के साथ अर्ज के प्रोग्राम में। राइस मोहम्मद रशीद ओरी की पहली सालगिरह आज है। सालगिरह के खुशी के मौके पर लिव लिव मामा अलीशा ओरी आली बुक्स प्यार प्यारा लाडला बेटा के लिए बड़ी प्यार दुलार और मुबारकबादी दुआएं खैर के साथ अर्ज करें।

चौरी की आज पहली सालगिरह है, सालगिरह की खुशी के मौके पर प्यारा प्यारा दादा है साहब रशीद ओरी, प्यारा प्यारा पोता के लिए बड़ी प्यार दुलार मुबारकबादी और दुआएं खैर के साथ अर्ज करें।

प्यारा दादा साहब रशीद और प्यारा प्यारा पोता के लिए बड़ी प्यार दुलार मोहब्बत मुबारकबाद के साथ अर्ज किए दुआएं खैर के साथ। राइज मोहम्मद रशीद ओरी इस वंदाग 1 year geworden पहली सालगिरह के खुशी के मौके पर लीवे पापा शरीफ ओरी एंड लीवे मामा आलिशा ओरी आली बुक्स प्यारा प्यारा बेटा के लिए बड़ी प्यार दुलार और मुबारकबादी दुआएं खैर के साथ अर्ज करें।

अल्मीर के रहने वाला राइस मोहम्मद रशीद ओरिकियाच पहली सालगिरह है। सालगिरह के खुशक में मौके पर बहुत बहुत मुबारकबादी अर्ज किया जा रहा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि छोटी प्यारा सा नन्ना सा राइस मोहम्मद रशीद ओरी को हमेशा सलामत रखे, खुश रखे, तंदुरुस्त रखे, हर एक बीमारी से, हर एक मुसीबत से दूर रखे।

के जरिए फरमाइश जारी किया जा रहा है। राइस मोहम्मद रशीद ओरी की पहली सालगिरह छह सालगिरह के खुशी के मौके पर इस बैंड हम जो आप सुनने को जा रहे हैं दादा रशीद ओरी और दादी रिया ओरी प्यारा प्यारा पोता के लिए, दो फुआ है शफीरा और शरीफा ओरी प्यारा प्यारा बेटा के लिए बड़ी प्यार दुलार मोहब्बत और मुबारकबादी दुआएं खैर के साथ अर्ज करें।

आज शुक्रवार 25 तारीख सितंबर को अलमीर के रहने वाला राइस मोहम्मद रशीद ओरी के पहली सालगिरह है। फंदाक एन यार खबर और इस खुशी के मौके पर नाना हिन ओरी की तरफ से पर नाती के लिए बड़ी प्यार दुलार और मोहब्बत मुबारकबादी दुआएं खैर के साथ अर्ज किए। राइस मोहम्मद रशीद ओरी की पहली सालगिरह आज है। सालगिरह के खुशी के मौके पर दादा शहीद ओरी एंड पर दादी आलमा ओरी प्यारा प्यारा पर पोता के लिए बड़ी प्यार दुलार मोहब्बत मुबारकबादी दुआएं खैर के साथ अर्ज करें।

अमीर किरण वाला राइस मोहम्मद रशीद ओरी की पहली सालगिरह आज शुक्रवार 25 तारीख सितंबर को है साल 2026 में, और इस खुशी के मौके पर मुबारक मौके पर लीफ पापा शरीफ ओरी प्यारा प्यारा बेटा के लिए बड़ी प्यार दुलार मोहब्बत के साथ अर्ज के राइज मोहम्मद रशीद ओरी की आज पहली सालगिरह है, और इस सालगिरह के खुशी के मौके पर इस बार फरमाइश करने वाले हैं फुआ शफीरा एंड फुआ शरीफा ओरी प्यारा प्यारा बेटा के लिए बड़ी प्यार दुलार मोहब्बत मुबारकबादी दुआएं खैर के साथ।

उजाला रेडियो के जरिए प्रोग्राम में नाम जो आपने सुने ही इस पर फरमाइश लाए गए सुन वालों, आज शुक्रवार 25 तारीख सितंबर है, तो आज बड़ी मुबारक का दिन है, जुमे का दिन है, खुशी का दिन है, मुबारक दिन है, क्योंकि आलमेर के रहने वाला राइस मोहम्मद रशीद ओरी की पहली सालगिरह है। और इस सालगिरह के खुशी के मौके पर फरमाइश करे थे प्रोग्राम में फुआ शरीफा एंड शफीरा, शफीरा और शरीफा ओरी प्यारा प्यारा बेटा के वास्ते बड़ी प्यार दुलार और मुबारकबादी के साथ दुआएं खैर के साथ फरमाइश किए।

शहर के रहने वाला राइज मोहम्मद रशीद तौरी की आज पहली सालगिरह है। सालगिरह के खुशी के मौके पर इस बार हमको फरमाइश करने वाला है पर नाना हिन ओरी पर नाती के लिए बड़ी प्यार दुलार मोहब्बत और मुबारकबादी के साथ अर्ज किया जा रहा है। दुआएं खैर अर्ज करते हुए फरमाइश की गई है

छः शुक्रवार 25 तारीख सितंबर आलमेर के रहने वाला राइस मोहम्मद रशीद ओरी की पहली सालगिरह है। फंदाक एन यार खबर खुशी के मौके पर नहमा को फरमाइश के प्रोग्राम में पर नाना हीन ओरी की तरफ से पर नाती के लिए बड़ी प्यार दुलार मोहब्बत मुबारकबादी दुआएं खैर के साथ। राइस मोहम्मद रशीद ओरी की पहली सालगिरह 6 सालगिरह की खुशी के मौके पर नहमा को फरमाइश कर रहे हैं लीव लीव मामा लीफ लीफ मामा आलिशा ओरी आली बक्स प्यारा प्यारा लाडला बेटा के लिए बड़ी प्यार दुलार मोहब्बत मुबारकबादी दुआएं खैर के साथ अर्ज किया जा रहा है।

कश्मीर की रहने वाला राइस मोहम्मद रशीद और की आज पहली सालगिरह है और इस सालगिरह की खुशी के मौके पर लीफ लीफ मामा आलिशा और आली बख्श प्यारा प्यारा बेटा के लिए बड़ी प्यार दुलार मोहब्बत और मुबारकबादी दुआएं खैर के साथ अर्ज के प्रोग्राम में।

0: उजाला रेडियो और उजाला रेडियो के जरिए सुनने वाले प्रोग्राम में हम फरमाइशें को जारी कर रहे हैं।
1: किसकी है?
2: तेरी है।
0: आज किसकी पार्टी है? किसकी पार्टी है? आज है फरियादा फन राइस मोहम्मद रशीद ओरी का पहली सालगिरह। सालगिरह मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। इस बार नवा जवाब सुनने को जा रहे हैं। मांग के हैं पापा लीफ पापा शरीफ ओरी प्यारा प्यारा लाडला बेटा के लिए बड़ी प्यार दुलार मोहब्बत और मुबारकबादी दुआएं खैर के साथ।

आज है फरियारी, आज है सालगिरह, राइस मोहम्मद रशीद ओरी के पहली सालगिरह, सालगिरह के खुशी के मौके पर लीफ पापा शरीफ ओरी की तरफ से प्यारा प्यारा बेटा के लिए भी प्यार दुलार मोहब्बत मुबारकबादी के साथ दुआएं खैर के साथ अर्ज किए। राइज मोहम्मद रशीद ओरी की पहली सालगिरह आज है सालगिरह के खुशी के मौके पर दादी रहाना ओरी जियाओ और दादा वहीद जियाओ प्यार प्यारा पोता के लिए दो फुआ शफीना और फाइजा जियाओ बेटा के लिए बड़ी प्यार दुलार मोहब्बत मुबारकबादी दुआएं खैर के साथ अर्ज करें।

0: पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता, बोलो।
1: पके पेड़ पर पका पपीता, पकड़ा पिंकी पति का कपड़ा।
0: कपड़ा

पर वजह की खाली हो पाकित। अरे नसल में घूमे, अरे हाय हाय, अरे बीबी की कर लाक दुनिया, अरे मिट्टी के भाव जाके, अरे भेज जाइए, अरे क्या भेज।

ये होते होते अपना ये हाल हुआ, यानी सतीशवा के, अरुणवा के, या विजया के, या फिरसवा के ये हाल हुआ। अरे बिक गए सूत बूत तो क्या रहेगा भैया सतीश।

और दिल कभी हमको समझाता है और हम दिल को कभी समझाते हैं, ऐसा भी होता है। आप सुने फिल्म अकेले हम अकेले तुम का गीत, और गीत के गाने वाले कुमार सानू एंड अलका जी।

दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। कुमार सानू की आवाज और फिल्म परदेश का गीत, स्टेशन उजाला रेडियो।

तू जाना रेडियो दे अबे प्लस पर देश भर में सुनाई देता है। तू बता दे सबको इसे बताते ऑटो में तू सुन सके तू घर में सुन सके है उजाला रेडियो और उजाला रेडियो साथ में ले जाइए तू चाहे जहां पर जाइए तू जान है तो उजाला रेडियो।

अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करती।

ये रात है ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो, यही।

कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहे लोगों को बता दें। हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

उजाला रेडियो वही रेडियो स्टेशन है जो कि 24 घंटे लगता है आपको खिदमत करते हैं हर एक रोज रात और दिन वीर बेटा उजाला रेडियो आपके हर काम काज के लिए उजाला रेडियो सही पता है चेक फॉर मेरी इन्फॉर्मेशन उजाला पिंडनाओ उजाला रेडियो सुनाई देता है खुली हवाओं में काबल के जरिए ऑनलाइन उजाला रेडियो के ऐप के जरिए या तो DAB प्लस के जरिए आप सुन सकते हैं उजाला रेडियो चारियो जहां पर भी आप जाइए हमें साथ मिले जाइए उजाला रेडियो आपको हर एक वक्त हर एक हाल में काम आ सकता है काम में लाए उजाला रेडियो आपके साथ